महला चौथा। हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुरपास। हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम प्रगाश। मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम प्रगाश। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई। हर कीरत हमरी रहरास रहाओ। हर जन केवड़ भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिले त्रिपतासें मिल संगत गुण प्रगाश।

जो सतगुर शरण संगत नहीं आई, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगाश। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित मैं उदम, जा आहर हर जियो परेया। सैल पत्थर मैं जंती उपाय, ताका रिजक आगे कर धरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया। रहाओ जनन पिता लोक सोत बनता, कोई ना किसकी धरे आ। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन पौ करे आ। ऊडे ऊड़ आवै सह कुसा, तिस पाछे बचरे शरे आ। तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मह सिमरन करे आ। सब निधान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सत बल जाइए, तेरा अंत ना पारा वरिया। राग आसा महला चौथा, सुपुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर गम्मा गामे पारा।

संतो जी सब दुख विसारण हारा, हारे आपे ठाकुर हारे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समान, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाना, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हो तुद बिन अवर ना जाना।

रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती। मन वजियां वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया। शब्दो ता गावो हरि केरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना। अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरै घर तां तेरै सब कुछ है जिस दे सो पावे। सदा सिवत सला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरै साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटों जिस दियां ए वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द कर सुभागै कर सुभागै शब्द वाजे कलाजित कर धारिया। पंच दू तुदवस कीते काल कंट कुमारिया तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कह लागे कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो बड़ पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पहे सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो। जे को खावै जे को पुंचै तिसका हुए उधारो। ए वस्त जी ना जाई नित नित राख उतारो। तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जा तो नाही मैनू जो कितोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोई। तरस पया मेरा मतोई सत

तरस पया मेरा मत होई, सतगुर सज्जन मिलया नानक, ना मिले ता जीवा तन मन थीवै हरिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

एक ओंकार वाहगुरु जी की फतेह। वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती समर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासै हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरे घर नौ नि दयावे ताए। सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत

मत को जाने जाए अगे पाए सी, जे कर्म कमाए तेहा होए सी। अमृत हर का नाउ आप वरताए सी, चलिया पातश्यों जन्म सवार वाजा वाए सी।

वाहेगुरु जी। कबीर ठाकुर पूजै मोल ले, मन हठ तीर्थ जाहे। देखा देखी स्वांग तार, भोले भटका खाहे। कबीर पाहन परमेश्वर किया,

अवल हमद जनाब अल्लाह दी नूं जिहड़ा कुदरती खेल बनाउंदा ई। 14 तपकां दी नक्शो नगार करके रंग रंग दे बाग लगाउंदा ई। सफा पिछलियां सब लपेट लैंदा अगों होर ही होर विछाउंदा ई। शाह मुहम्मदा उस तों सदा डरीए जो बादशाहां तों भीख मंगवाउंदा ई। इत्थे आया नूं दुनिया मोह लैंदी दगे बाजां दा धार के भेसमियां। सदा नहीं जवानी ते ऐश मापे सदा नहीं जे बाल वरेशमियां। सदा नहीं जे दौलतां फील घूड़े सदा नहीं जे राजियां देशमियां। शाह मुहम्मदा सदा ने रूप दुनिया ते सदा रहने नी कालड़े केसमियां। ए जग सराए मुसाफरां दी, ए जग सराए मुसाफरां दी। इत्थे जोर वाले कई आए गए शहदाद नमरूद फरियून जाए दावा बन खुदाए कहाए गए। अकबर शाह जै वैच दिल्ली दे जी फेरी वांग वणजारियां पाए गए। शाह मुहम्मदा रहेगा रब सच्चा वाजे कूड़ दे कई वजाए गए, वाजे कूड़ दे कई वजाए गए। दीन दुनी दे मालक सर्वरे कायनात शब्द गुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र दरबार अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आओ अपनियां रसनावां नूं पवित्र करिए। मन नूं चढ़दी कला विच लिया के गज वज के फतेह बुलाइए। आखिए जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुर कृपा करन सब दियां हाजरियां अपने चरणा च प्रवान करन। सानूं अपने दरों घरों गुरसिखी जीवन नाम दान दा दात बख्शन। असी चंगे गुरसिख बन जाइए जिदा दे साडे गुरु साहिबान 239 सालां दी महान घालणा तो बाद उन्होंने गुरसिख की संताप संपादना की सी ना। तो गुरु प्यारे इदा दे आपां भी गुरसिख बन जाइए जिन्हां गुरस

चार आप वरताए सी मत को जान जाए अगे पाए सी जे कर्म कमाए तेहा होए सी अमृत हर का नाओ आप वरताए सी चलिया पत स्यों जन्म सवार वाजा वाए सी मानस क्या वेचारा तेह लोक सुनाए।

पहला पहला दो तुकी तू गुण दातो निर्मलो पाई निर्मल ना मन होए हमें अपराधी निर्गुणे पाई तुझ ही ते गुण सोए।

दाता हमें मार मन सा मने सुमानी गुर कै शब्द पछाता चिंत काम करे प्रभ तिन्ह के जिन हर का नाम प्यारा। गुर प्रसाद सदा मन वसिया सब काज सवारण हारा ओना की रीस करे सो वे गुचै जिन हर प्रभ है रखवारा। बिन सतगुर से

न लागै कोई सोरठ महला तीजा। हर जियो शब्दे जापदा पाई पूरै पहाग मिलाए सदा सुख सुहागनी पाई अंदन रतिया रंग लाए।

भाई। हर सेती रंग लाए रहाओ, गुर की कार कमावनी भाई, आप छोड़ चित लाए। सदा सहज फिर दुख न लगई भाई, हरे आप वसै मन आए, फिर का हुक्म न जानी भाई, साकु लखनी को नार।

नाम संभाले सुख वसहे पहाई, सदा सुख शांत शरीर। नानक नाम संभाल तू भाई, अपरंपर गुणी गहीर। सोरठ महला पंजवा, घर पहला अष्टपदिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब जग जिने उपाया पाई, करण कारण समरथ। जियो पिंड जिन साजिया पाई, दे कर अपनी वथ। किन कही है क्यों देखी है भाई, करता एक अकथ। गुरु गोविंद सलाही है भाई, जिस ते जपै तथ।

मिटै अंधेरा ज्ञान ता पाई, कमल होवै प्रगास। गुर बचनी सुख उपजै पाई, सब फल सतगुर पास। मेरा तेरा छोड़िए भाई, होइए सब की तूर। घट घट ब्रह्म पसारिया पाई, देखै सुनै हजूर। जित दिन विसरै पार ब्रह्म पाई, तित दिन मरिए चूर।

मोन पयो कर पाती रहयो नगन फिरयो बन माही तट तीरथ सब तरती भ्रमयो दुबदा छुटकै नाहीं।

ससुरै पैया पैवसी सतगुर सेव ने संग पर हर कपड़ जे पिर मिलै खुशी रावे पिर संग।

सोरठ ताम सुहावनी जाहर नाम टंडोले। गुर पुरख मनावै अपना गुरमति हर हर बोले। हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रति हर रंग चोले।

हों गुरमुख सदा सलाही गुर कौ वारिया। श्लोक महला तीजा। हो मैं जल ते जल मुए भ्रम आए दूजे पहाए पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए। एहे जग जलता नदरी आए आ गुर के शब्द सुभाए। शब्द रते से शीतल भए नानक सच कमाए महला तीजा। सफले ओ सतगुर सेवया धन जन्म प्रवान जिन्ना सतगुर जी वदया मोया ना विसरै। सही पुरख सुजान कुल उधारे अपना सो जन होवै प्रवान। गुरमुख मुए जीव दे प्रवान है मन मुख जन्म मराहे। नानक मुए ना आखिए जे गुर कै शब्द समाहे। पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव हर नाम त्याई है सतसंगत साधु लग हर नाम समाई है।

हुक्म फरमाइए। हों गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाई ऐ श्लोक महला तीजा। पूरब लिखिया कमावना जे करतै आप लिखियास मोह ठगोली पाइयन विसरिया गुणतास।

नाम तिना को मिलया, जिन को तुर लिख पाया महला तीजा। घर ही मह अमृत भरपूर है, मन मुखा साधना पाया। ज्यों कस्तूरी मिर्ग न जाने, भ्रम दा परम भुलाया। अमृत ताजो बिख संग्रह, करते आप खुआया। गुरमुख बिरले सोजी पई, तिन्ना अंदर ब्रह्म दिखाया।

पौड़ी। हर आप वरतै आप, हर आप बुलाएंदा। हर आपे सृष्ट सवार, सिर तंदै लाएंदा। जान नानक नाम त्याई, गुरमुख गुण गाएंदा। सलोक महला तीजा। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। मन चिंदिया फल पावना, हमें विच हो जाए। बंधन तोड़े मुक्त होए, सच्ची रहे सुमाए। इस जग में नाम अलब है, गुरमुख वसै मन आए।

जमहे तै मर जाहे, सहसा रोग ना छोड़ई, दुख ही दुख माहे। नानक नदरी बख्श लहे, शब्द मेल मिलाहे महला तीजा। जो सतगुर ते मोह फेरे, तिन्ना ठौर ना ठाओ। ज्यों छुट्टड़ घर घर फिरे, दोहो चारण बद नाओ। नानक गुरमुख बख्शियन, जे सतगुर मेल मिलाओ पौड़ी। जो से सेवहे सत मुरार, से भव जल तर गया। जो बोल है हर हर नाओ, तिन जम छड़ गया। से दरगाह पैंदे जाहे, जिन्ना हार जप लया। हर सेवहे सही पुरख, जिन्ना हर तुद मया। गुण गावां प्यारे नित, गुरमुख भ्रम पौ गया। श्लोक महला तीजा।

अंतर ज्ञान न आयो जित किछ सोझी पाए, बिन डिठा क्या सा लाही है अंधा अंध कमाए। नानक शब्द पछाणिए, नाम वसै मन आए महला तीजा। इका बाणी एको गुर, एको शब्द विचार, सच्चा सौदा हट सच रतनी परे भंडार।

पंडित तिन की बरकती सब जगत खाए, जो रते हर नाए, जिन गुर कै शब्द सलाहे आ, हर स्यों रहे समाए।

पंडित पुले दूजे लगे माया कै वापार, अंतर तृष्णा भुख है मूर्ख भुख्या मुए गवार। सतगुर सेवै सुख पाया सच्चे शब्द विचार, अंदर हो तृष्णा भुख गई सच्चे नाए प्यार।

पौड़ी बिन सतगुरु किने न पायो, बिन सतगुरु किने न पाया। सतगुरु विच आप रखियो, उनका प्रकटे आग सुनाया। सतगुरु मिलिया सदा मुक्त है, जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम विचार है, जिन सच्चे स्यों चित लाया।

पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ वैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करता किस नल की जय दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यों कूड़ डोबैपुर नान

मिले तो मस्तक लाइए, कूड़ा लाल छड़िए, होई एक मन अलग ते आइए, फालते वे हो पाइए, जे वे ही कार कमाइए, जे होवे पूर्व लिखिया तो तुरत ना दी पाइए, मत थोड़ी सेव गवाइए।

पौड़ी पड़े हुए गुनेगार तुम इंसान न मारिया जेहा काले कालना ते वेहो नौ बचारिया ऐसी कला न खेडिये जिधर गया हारिया पड़िया त्यो मिया विचार के विचारिये।

जले न जाए। तन सुमान स्नान का जुगल चले पाई, चौंकड़ मूर अनाया बह चौके पाया, सिखा कन चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थिया। ओम वाह।

0: गऊ ब्राह्मण को करला वैगो बर्तन न जाए। धोती टिका तै जप माले तान मलेशा खाए। अंतर पूजा प्रहकते बासन जम तुरका पाए। छूडी ले पखंडा नाम लिया जाय तिरंगा महला पहला।
1: मानस खाने करे निवाज छुरी वगायन तिन गलताग। तिन कर ब्राह्मण पूरे नाज ओना पियावे ओई साध। कूड़ी राज कूड़ा वपार कूड़ बोल करे आहार। शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा भरपूर। मथे टिका तेड़ धोती कखाई हाथ छुरी जगत कसाई। नील वस्त्र पैर हुवे प्रवान मलेश तान ले पूज है पुराण। अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसना जाना। देखे चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कुड़े यार। मत पिटै वे मत पिटै एहो अन्न असा डा फिटै।

दर्शन परसें गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी नूरे अरशों कुरसों झटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए। वाहिगुरु जी सलोक महला तीजा। अंदर कपट सदा दुख है मन मुख ध्यान न लागे दुख विच कार कमावणी दुख वरतै दुख आगै।

मन मुख मैले मरें गवार, गुरमुख निर्मल हर राख्या उरतार। पनत नानक सुनो जन पाई, सतगुर सेव्यो होमे मल जाई। अंदर संसार दुख व्यापै, सिर तंदा नित मार। दूजे पाए सूते कबो न जागे, माया मोह प्यार। नाम न चेतै शब्द न विचारै, ए मन मुका विचार। हर नाम न पाया बिरथा जन्म गवाया, नानक जम मार करे खुआर। पौड़ी जिस नो हर भगत सच बख्शियन, सो सच्चा शाह। तिस की मोहताजी लोक कढ़दा, होर तहट ना वथ ना विसा। भगत जना को सनमुख हुवै, सो हर रास ले वे मुख पस पा। हर के नाम के व्यापारी, हर भगत है जम जा गाती। तिन्ना नेड़ न जा, जन नानक हर नाम तन लद्दिया सदा वे प्रवाह। जन नानक हर नाम तन लद्दिया सदा वे प्रवाह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वडभागे हो सजे दवाना दियां हाजरियां भर दे रब्बी बाणी के कीर्तन। इसे तरह सरबत दे भले की अरदास हुई ते आप जी ने पावन मुखवाक सरवण कीता है। सात संगत जी नगर सानेवाल कलां ते खुरद अते पिंड जलाजण जिला लुधियाणा दियां संगतां वल्लों कल रोज तो श्री अखंड पाठ साहब जिहड़े ने उह गुरद्वारा साहब विखे प्रारंभ होए ने। सो नगर निवासियां वल्लों आप संगतां नूं बेनती है कि आप जी ने हाजरियां भर के गुरु जस गुरबाणी सरवण करके लाहे प्राप्त करने। नगर निवासियों वालों गुरु के लंगरां की सेवा कल रोज तो चल रही है, कल ऐतवार समाप्ति होगी। उपरंत दीवान सज्जनगे जिस विच गुरबाणी कीर्तन कथा विचार टाडी वारा इतिहास आप जी नूं सरवण कराया जाएगा। इसी तरह भाई जगजीत सिंह बीबी सुखजिंदर कौर दियोल परिवार वालों अपने बच्चों की जन्मदिन की खुशी में कल रोज तो श्री अखंड पाठ साहब प्रारंभ ने, गुरु के लंगरां की सेवा हो रही है। सो आप संगतां नूं बेनती है कि आप जी ने हाजरियां भर के लाहे प्राप्त करने। हुण कड़ा प्रसाद की देख वरत रही है। समा है गुरबाणी विचार दा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।

0: सतगुरु जी कृपा कर गुरबाणी की नितनी सेवा प्रवान आओ गलेरा प्रोग्राम साढ़े सतकार योग ज्ञानी भाई गुरशरण सिंह जी तिना पासों सुन करिए हुई भुलां दी खिमा लवाओ हाजरी आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा
1: वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद इस सन भाई जसविंदर सिंह जी श्री अमृतसर वालियां दा जत्था जो आप जी नू रब्बी बाणी दे कीर्तन सरवण करा रहा सी अज दे विशेष समागम बच्ची जोया कौर कलेर जिहड़ी कि न्यू बॉर्न बेबी है तिना दे जन्म की खुशी दे विच कलेर परिवार ते ढट परिवार वल्लों इसे तरह बच्चियां ब्रह्मजोत कौर ते गुरसिमरन कौर जिन्हां ने अपनी ग्रैजुएशन की डिग्री संपूर्ण की है शुकराने वजों सेवक परिवारों वालों गुरु चरणों का उटासरा परसिया है। सो हुण 20 मिनट लई 11:30 तक ढाडी जत्था आप जी ने दो कवितावां सरवण करावेगा। उस तो बाद 11:30 ते आनंद साहब का पाठ ते अरदास होवेगी। आप जी ने संयोग बख्शना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
2: वाहिगुरु जी वाहिगुरु
3: वाहिगुरु वाहिगुरु

0: हाथ जोड़ निगारा मतां दी पा दियो हुजूर
1: जसी किस्मत वीला आख दे साडा बेड़ा बन ला दियो हुजूर।

वेद सिमरत कथे शास्त्र भगत करें विचार मुक्त पाइए साध संगत बिन सजाए अंधार चरण कमल धार जन का रास पूंजी एक तान मान दिबान साचा नानक की प्रभटेक चरण कमल आधार जन का

ऐसी गोविंद ऐसी भक्त गोविंद की कीट हस्ती जीता जो जो कीनो अपनो तस अभेदन दीता सिंह बलाई हो गयो तिन मेरे देखीता शर्म करै दम आड़ को ते गनी तनीता।

पंजवार आडल बचन साधु जना सब मैं प्रगटाया, जिस जन हुआ साध संग तिस भेटे हर राया। ए प्रतीत गोविंद की जब हर सुख पाया, अनेक बाता सब करे गौर कर ले आया रहाओ। शरण परे की राखता नाही सहसाया, कर्म पूम हर नाम बोए अवसर दुबलाया। अंतर जामी आ प्रभ सब करे कराया, पतत पनीत घने करे ठाकुर विदुराया। मत भूलो मान

पंजवा एक टेक गोविंद की त्यागी अन आस सब ऊपर समरथ प्रभ पूरन गुणतास जन का नाम आधार है प्रभ शरणी पाए परमेश्वर का आसरा संतन मन माए राओ आप रखे आप देवसी आपे प्रत पारै दीन दयाल कृपा निदय सा सा सुमारै करन हार जो कर रिया साई बड़े आई गुर पूरे उपदेसिया सुख खसम रजाई।

हाथे ओए हमारे साजना हम उनकी रेन दिन भेटत होवत सुखी जिया दान देन रहाओ परा पूर्वला लिखिया मिलिया अब आए बस्त संग हर साध कै पूर्ण साए भै विनसे त्यों लोके पाए सुखथान दया करी समरथ गुर बसिया मन नाम नानकी तू टेक प्रभ तेरा आधार करण कारण समरथ प्रभ हर अगम अपार बलाबल महला मंजवान सोई मलीन दीन हीन जिस प्रभ स्नान बिसराना करने हार न बुझई आप गने विगाना दुख तदै जद विसराए सुख प्रभ चित आए संतन का आनंद हो नित हर गुण गाए रहाउ।

कृपा करी राख्या मेरा भाई। हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाई राह बिरती कह देना हो वही जन की अरदास। नानक जोर गोबिंद का पूर्ण गुणदास। बिलावल महला पांचवा। मर मर जन्मे जिन विसरिया जीवन का दाता। पार मनोरंजन सेव्या अन दिन रंग राता। आशा सहज आनंद घना पूर्ण पई आस। सुख पाया हर सासंग सिमरत गुणतास राओ। गुण स्वामी अरदास जन तुम अंतर जामी। थान थनांतर रव रहे नानक स्वामी। बिलावल महला पांचवा। ताती वावन लग गई पार ब्रह्म शरणाई। चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे ना पाई। सत गुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई। राम नाम औखो दिया एक करे उल्ले वलाई। राहो राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मिटाई। कौन नानक कृपा पई प्रप सहाय। बिलावल महला पांचवा। अपने बल के आप रखिन पार ब्रह्म गुरदेव। सुख शांत सहज आनंद पै पूरन पई सेव रहाओ। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप। रोक मटाए जी वालिया जा कावड़ प्रताप। दुख मारे बख्शियन अपनी कलधारी। मन बाए तो फल दित्तियन नानक बलहारी। राग बिलावल महला पांचवा। चौप देख दोपते कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मोन सुवरणी ए ना सुनाए। सागत गीत ना धुन गावत बोलत बोल अजाए। राहो सेवत सेव सेव साध सेव सदा करो किरताए। अभिदान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए। रसना गह रसना अगे अगे गुण राती। नैन दास रंग लाए हो कृपाल दीन दुख पंजर। मोय चरण दिसे विशाए। सब तले तले सब ऊपर ए दृष्ट दृष्टाए। अभिमान खोए खोए खोए खोही हो मोको सत गुरु मंत्र चढ़ाए। अतुल अतुल अतुल न तुलिया भक्त वचल कृपाए। जो जो सन प्रयोग गुरु नानक अभिदान सुख पाए। बिलावल महला पांचवा। प्रभ जी तू मेरे प्राण आधारे। नमस्कार डंडौत पंद्रह अनक बार जाओ बारे। रहा ऊट बैठ सो जागत ए मन तुझे चतारे। हे सुख दुख इस मन की बिरता तुझी आगे सारे। तू मेरी ओट बल बुद्ध धन तुम्हें तुम्हें मेरे परवारे। जो तुम करो सोई पल हमरे पेख नानक सुख चरनारे। बिलावल महला पांचवा। सुनियत प्रभ तो सगल उदाहरण। मोय मगन पत संग पा प्राणी ऐसे मने बसारन। आओ संच बिख्या ले ग्राज कीनी अमृत मन ते डारण। काम क्रोध लोभ रत निंदा सत संतोख बदारण। इनते काल लियो मेरे स्वामी हार परे तुम सारण। नानकी बेनंती प्रभ पैसा संग रंग कतारण। बिलावल महला पांचवा। संतन कह सुनियत प्रभ की बात। कथा कीर्तन आनंद मंगल धुन पूर रही दिन और रात रहा। कर कृपा अपने प्रभ कीने नाम अपनी कीनी दात। आठ पैर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध इस तन ते जात। तृप्त अगाए पेक प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात। चरण सरण नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मिलात। बिलावल महला पांचवा। राख लिए अपने जन आप कर कृपा हर हर नाम दीनो। बिनस गए सब सोख संताप। रहाओ गुण गोविंद गावो सब हर जन राग रतन अपना आलाप। कोट जन्म की तिसना निवरी राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे सरण सुखदाते गुर के बचन जपे हर जाप। सागर तरे परम पै बिनसे को नानक ठाकर प्रताप। बिलावल महला पांचवा। ताप लाया गुर सिरजनहार सतगुर अपने को बल जाई। जिन पैज रखी सारे संसार रहाओ। कर मस्तक धार बालक हर रख लीनो। प्रभ अमृत नाम महा रास दीनो। दास की लाज रखे मेहरवान गुरु नानक बोले दरगह परवान। राग बिलावल महला पांचवा। चौपदे दो पदे कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर शब्द अजारो दीपा बिनस्यो अंधकार मैं मंदर। रतन कोठरी खुली अनुपा रहाओ। बिस्मन बैस पै जो पेख्यो कह न जाई वड्याय। मगन पै उहां संग माते ओत बोत लपटाई। आल जाल नाही कैश।